कभी देखा इस तरह जायजा लेकर? मैं सुन्नत के जो आमाल हैं वो सुन्नत के मुताबिक अदा करता हूं या नहीं करता? सोने के क्या आदाब है, उठने के क्या आदाब है, इनके कभी इसका जायजा लेके देखा मैं अमल करता हूं उन पर या नहीं करता? घर वालों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया है मामले का, वो करता हूं या नहीं करता? कभी झूठ बोलता हूं या नहीं बोलता? कभी गीबत करता हूं या नहीं करता? कभी किसी पर बोतान लगाता हूं या नहीं लगाता? इस नुक्ते नजर से अपना जायजा लेकर देखना हर मुसलमान के जिम्मे इस आयत ने फर्ज ऐन किया, अलैकुम अनफुसकुम। लेकिन हम इससे गाफिल हैं, लिहाजा हम में से हर एक का काम यह है कि वो अपने शबो रोज का जायजा लेकर देखे कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और तालीमात के मुताबिक गुजार रहा हूं या नहीं। अच्छे खासे दीनदार, पांचों वक्त नमाज में हाजिर होने वाले, लेकिन अखलाक, अखलाक के मामले में वो बाज़ औक़ात दूसरों के लिए काहिर और जाबिर बन जाते और उनके अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलूक हसन, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान हश्र के जब तराजू कायम होगी तो कोई चीज तराजू के अंदर इतनी वजनी नहीं होगी जितने अच्छे अखलाक वजनी होंगे। वो अच्छे अखलाक हमें हासिल हुए या नहीं हुए, इस नुक्ते नजर से जायजा लेने की जरूरत है। और यही रास्ता है कि जब हर शख्स अपनी इस्लाह की फिक्र में पड़ जाएगा तो उसके नतीजे में चिराग जल उठेंगे मुख्तलिफ जगहों पर और चिराग से चिराग जलेंगे। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम सिर्फ हालात की खराबी का रोना न रोएं, बल्कि उससे ज्यादा अपने आमाल अखलाक की फिक्र करें। अरे भाई बैठ जाओ, तो क्या है, अपने आमाल अखलाक की फिक्र करें कि वो किस हद तक हम सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं है। हमारे आपस में लड़ाइयां हैं, छोटे छोटे मसलों पर झगड़े हैं और एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आपके तर्ज अमल ने बताया कि आपको कोई चीज इतनी मबगूज नहीं थी जितने मुसलमानों के दरमियान इफ्तराक और इंतशार। लेकिन हम अगर 10 आदमी भी हैं किसी बात में तो उनके दरमियान आपस में इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ क्या होगा कि कोई आगे बढ़ गया, मुझसे क्यों आगे बढ़ गया, हसद पैदा हो गया, बुग्ज पैदा हो गया, हुब्बे माल हुब्बे जाह ने हमारे कल पर जगह ले ली। ये सारे असबाब है जो हदीस में फरमाया गया था कि एक वक्त वो आएगा कि दूसरी कौमें मुसलमानों को खाने के लिए दो आपस में एक दूसरे को दावत देंगी, आओ वो दस्तरखान सजा हुआ है, इसमें मुसलमानों का गोश्त है, खाओ सब मिलके। तो साहब किरान ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम हो जाएगी? आपने फरमाया नहीं, इन्नहुम गुसा उनका गुसा इस सैल, उनकी तादाद बहुत होगी लेकिन वो सैलाब में बहते हुए तिनकों की तरह होंगे। ये आपने पेशिन गोई फरमाई थी। आज मुसलमानों की तादाद दुनिया में कभी इतनी नहीं हुई जितनी आज हो गई है, लेकिन बहते हुए तिनकों की तरह। वो क्यों है कि अपनी फिक्र नहीं कर रहे, अपनी फिक्र, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं कर रहे। इस्लाह जो होती है वो पहले एक शख्स से होती है, वो पहले अपनी इस्लाह कर लेता है तो फिर दूसरे की इस्लाह करता है। तो इसलिए ये फिक्र होनी चाहिए। उसके साथ मैं आपसे, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था,

होंगे, लेकिन जन्नत की शुरू भी मियां बीवी है और जन्नत का एंड भी मियां बीवी है। इब्तिदा भी मियां बीवी से करवाई आदम हव्वा, और इंतहा भी मियां बीवी से करवाई कि हर आदमी जन्नत, और जो यहां बगैर शादी के मर जाते हैं अल्लाह ताला उनके वहां अपनी सवाबदीद पर उनके निकाह करवाएगा और उनकी शादी। कुछ औरतें बगैर, लड़कियां होती हैं जवानी में मर गए, कोई लड़के जवानी में मर गए, कोई शादी नहीं हुई मर गए, तो अल्लाह ताला उनकी जन्नत में खुद शादियां करवाएगा। तो जिंदगी की जो इब्तिदा है वो मियां बीवी से होती है। तो पहला जो मुआशरत में दीन का सबक है वो मियां बीवी का है। तो मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हूं, वह अना खैरुकुम ले अहली, और मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करता हूं अपनी बीवियों के साथ। फिर कहा खैरुकुम खैरुकुम ले निसाई, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो औरतों से अच्छा सलूक करता हो।